0: नेपाल पे क्यू बार में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यू आर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यू आर नेपाल के अपने क्यू आर
1: सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ यही वैशाख 15 गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेकाले सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउन हुन सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछौ।
2: यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालय जाने उमेर पुगेका सम्पूर्ण बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौ।
3: यदि कसैले कुनै बाल बालिकाको अभिभावकत्व लिई पठन पाठनमा सहयोग गर्न चाहेमा यही भर्ना अभियानमा लिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
2: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा शाखा सुर्खेतद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
3: विद्यार्थी भर्ना अभियान 2083 भव्यताको साथ सफल पारौं।

0: नेपाल पे क्यूबार में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
1: कान जाँच शिविर होने सम्बन्धी सूचना
2: यही वैशाख 26 गते शनिबार का दिन
3: सनराइज मेडिकल हल पिपिरा सुर्खेत में बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र फुलटेकरा नेपालगंज का वरिष्ठ प्राविधिक एक दिन कान जाँच शिविर होने जानकारी गराउँदछौ।
1: शिविर में दिइने सेवाहरू कान पाक्ने जीर्ण रोग को उपचार तथा परामर्श अडियोग्राम मेसिन कान सुन्ने क्षमता को जाँच काने गुजी ढुसी र बाह्य वस्तु परेको निकालिने कान नसुन्ने बिरामीलाई सुफद मूल्य में श्रवण यंत्र उपलब्ध कराइने अपरेशन गर्न पर्ने बिरामीलाई बागेश्वरी कान स्याहार केन्द्र फुलटेकरा नेपालगंजमा विशेष सहुलियतमा अपरेशन गरिने
3: थप जानकारीका लागि सनराइज मेडिकल हल आस्था पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड पिपिरा चोक सुर्खेत सम्पर्क फोन नम्बर 083-411-045 र मोबाइल नम्बर 98-550-17-645 र 98-481-313।
4: यो जिन्दगीले पनि केही लथर बाटो लाउला त्यसै विदेश जाउँ पासपोर्ट बनाउनु पर्छ छैन के गर्ने गर्ने मलाई दिक्ता भइसक्यो।
5: ओइ ठुले एक्लै बसेर के गुनगुनाइरहेछस् त?
4: के गर्नु दाजु यहाँ बसेर के काम नाम पनि छैन पैसा पनि छैन अब इन्डियातिर जाने सुर कस्या हौ दाजु मैले?
5: अब इन्डिया नै जाने सुर कस्या भए रोका म्यान पावर सप्लायर्स अमृत सहर पन्जाबमा जा।
6: के भन्छ नि दाजु मैले त कुरै बुझिन त
5: हौ। हो त नि अमृत सहर पन्जाबका विभिन्न होटलहरूमा बस्नको व्यवस्था सहित वेटरमा जागिर लगाइदिनुहुन्छ मासिक 21,600 देखि 43,200 सम्म कमाउन पनि सकिन्छ नि।
6: हो र दाजु कहाँ गएर कोलाई भेट्ने के गर्ने के अत्तो पत्तो थाहा छैन मलाई त।
5: हराउने कोलाई भेट्ने तैले चिन्तै लिनु पर्दैन नि। सिधै वीरनगर 10 सुर्खेतमा भएको सासा होस्टेल भएको घरमा गएर सुरजन लोकाईलाई भेट
6: अनि फोन नम्बर नि दाजु फोन नम्बर त चाहियो नि फेरि उहाँ गरी के हो कसो
5: न टिपिराख फोन नम्बर 98-20-29-93-48 98-20-29-93-48।

नेपाल पेट्रीबार में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहज से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

0: संगे नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
1: वेल्डिंग ड्रिल ग्रेडर मल्टीमीटर र हाइड्रोमीटर सहित औजारहरूको सेट मात्र 15,000 इच्छुक व्यक्तिले सामान खरिद गरी हरेक शनिबार हुने एक दिनको तालिमद्वारा आफ्नै घरबाट आत्मसम्मान र स्वरोजगार भई छर छिमेकमा कला कौशल देखाई समाजमा राम्रो कामको शुभारम्भ गरौं समूहमा 24 मात्र सहभागी गरिनेछ सम्पर्क मानिकेज ऊर्जा सुर्खेत सम्पर्क व्यक्ति रुद्र घरती मोबाइल नम्बर 98025424900

0: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजी से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
1: एसई सकियो अब रमाइलो शुरू भयो
2: नेपाल टेलिकम ले ल्यायो विशेष एसईई अफर मात्र रु 20 मा प्रीपेड सिम कार्ड रु 9 रुपैयाँ 80 पैसा ब्यालेन्स सहित 30 दिन सम्म दैनिक पाउनुहोस् 20 मिनट भोइस 500 एमबी डेटा 10 एसएमएस
1: अझै रमाइलो रु 50 वा सो भन्दा बढी रिचार्ज गर्दा 50 एमबी बोनस डेटा 50 मिनट बोनस भोइस 50 एसएमएस बोनस
2: यो योजना 2082 चैत्र 26 गते देखि 2083 असार 26 गते सम्म
1: थप जानकारीका लागि 1498 मा सम्पर्क गर्नुहोस्
3: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
4: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
5: रेडियो भेरी एफएम 98.6 102.7 मेगाहर्ज
6: Extreme energy drink. Time check. अहिले ठीक 11 बजेको छ.
7: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

परास्तिन कसैलाई चुनी चुनी सधैँ परि हाम्रो माया अदम बढी जहाँ साउँ सता साउँ तिम्रो छाया वरिपरि माटो लुकुटामा कम्मर पाछि नाचिदिला सङ्गीतको छालमा कम्मर जस्तै बगिदिला।

0: पे क्यू आर संगे।
1: नेपाल पे क्यू आर में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यू आर में सहजी से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यू आर नेपाल के अपने क्यू आर।
2: सूचना यही बैशाख 26 गते शनिवार का दिन
3: यस राणा हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेतमा भेरी अस्पताल नेपालगंजमा कार्यरत छाला यौन तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झाद्वारा सशुल्क जाँच गरिने भएको हुँदा सम्बन्धित रोगका बिरामीहरूले समयमै नाम दर्ता गराई मौकाको फाइदा उठाउन हुन अनुरोध गर्दछौ। डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू छाला कपाल तथा यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, हाम्रा दैनिक सेवाहरू, हाडजोडी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर पदम गिरीद्वारा जाँच तथा उपचार सेवा, कन्सल्टेन्ट फेमिली फिजिसियन डाक्टर लोकराज कणेलद्वारा जाँच तथा उपचार सेवा। सम्पर्क राणा हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, वीरेन्द्रनगर 4 एरीचोकदेखि 200 मिटर उत्तरतर्फ। सम्पर्क फोन नम्बर 083-590-693।
4: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग 2।
5: सर्वजीको परिवार सबैले डराएका हुन्छ, तर त्यति ठूलो भूकम्प आएर हल्लाएको त्यो घरलाई केही हुँदैन। यसरी नै दिन महिना वर्ष बित्दै जान्छ, अनि एक दिन फेरि अचानक ठूलो भूकम्प आएर त्यो श्री एफई 550D ले बनाएको शर्माजीको घरलाई झन धेरै हल्लाउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
6: रेडियो भेरी एफएम

0: नेपाल पे क्यूबार में आबद हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
1: रेडियो रेडियो
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6
3: Extreme energy drink. Time check. Oil take. 5 o'clock.
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

पेक्यू बार में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

कल्पे क्यूबार में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: রেডিও এরি এফএম 98.6 আরে বাটা 102.7 বীরেন্দ্রনগর সুরখেত বাটা।
1: गजल साहित्य को संरक्षण र संवर्धन को अभियान नवसर्जक र अग्रजहरूको एउटै चौतारी कार्यक्रम गीत गजल।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 RX 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी